0: कै सिमरन कबहु का प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभ कै सिमरन कबहु न छूरे
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभ कै सिमरन सहज समानी
0: प्रभ कै सिमरन निहचल आसन
1: प्रभ कै सिमरन कमल विकासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार
1: प्रभ सिमरन अंतर पार
0: से सिमरे जिन आप सिमराए
1: नानक
2: जन जिन का प्रभ मैं
1: नानक तेंजन सन्नी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पै

0: जगत होए सुखिया।
1: लाख करोड़ी बंधन परे
0: हर का नाम जगत निस्तरे।
1: अनेक माया रंग तिख न बजावे
0: हर का नाम जगत त्यागावे।
1: मार्ग जात अकेला
0: हर नाम संग होत सहेला।
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए।
1: टूटत नाही कोट लख बाही
0: नाम जगत ते पार पराही।
1: अनेक विघन जाए आए संगारे
0: हर का नाम तत्काल हारे।

0: सानो
1: ये महा पे आन तपत बोकाम
0: जहां के नाम की तुम पर शाम
1: जहां त्रिखा मन तो जया करखे
0: नानक हर हर अमृत बरखे
1: संत जना के मन बस राम
2: संत जना के मन बिसराम संत जना के मन बिसराम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर का नाम जय जन कोट
1: हर जस करत संत दिन रात
0: हर औखद सा

0: पर जन के ओट सताड़ी
1: हर प्रताप जनवर न जाने
0: पोत पोत जन हर रस राते
1: सुन समाज नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का पंथ

0: चार
1: नानक कर्म नाम जपिए कपार
0: खंड पृथ्वी फिरे चर जीव
1: महावास कपी सर्थीव
0: भगन महे होमत प्राण
1: तन त्यासो है वर कुम्दान
0: बोली कर्म करे वासन
1: जैन मार्ग संयम्या साधन
0: निमक निमक कर श्री रुकटावे
1: तंबी हमने है न जाए
0: नाम संसार कशना है
1: नानक गुरु नाम जपत जत पाए
0: मन कामना तीर्थ दे छुट्टे।

0: प्राप्ते
1: उमरी अस्तत तुमते होए
0: नानक अवर न जान सोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्बल कर्म
1: क्रिया में उत्तम क्रिया
0: साध संग धर्म मत मल लिया
1: उद्यम में उद्यम फला।

0: हार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पया ऊपर साख सैन यो निर्गुण गुण कशु न बुझे
1: तो हे
0: प्रसाद तर ऊपर सुख बस है
1: हे
0: प्रसाद पी वह शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाद
0: हे प्रसाद भोग है सब रसा
1: सामग्री संग साथ बसा
0: पीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग कर संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे आद अंत जो रखन हार
1: प्रीत न करे गुहार
0: राखी सेवा नाम निध पावे ठाकुर सब सदा हजूरे राखी टहल पावे दरगह मान
1: सारे
0: सदा सदा एहो पूलन हार संध्या को डी संग रचै
1: जो
0: छड़ना सो अस्थिर कर माने
1: जो मन सो दूर कराने
0: छोड़ जाए किसका श्रम करे
1: संग सहाय जस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तुए अंध कूप में पतत बकराल तूत पशु की मानस जात बाहर वेख अंतर मल माया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापे
0: अंतर अगन बाहर तन सुहाग
1: पाथर कैसे करे
0: रहा अंतर बसे प्रभ आप
1: सुन
0: अंधा कैसे मार्ग पावे
1: वहाँ
0: बाजार से बुझे डोरा
1: तो
0: वहाँ बिशन पद गावे घूंग पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं हो तुम्हारा
0: अवतार करना मैं दीन बेनती करे
1: तुम्हारी कृपा करे
0: संग सहाय सो आवे न चीत के ग्रह पितर बसे
1: सरकार
0: माने मन है प्रतीत
1: मुड़े चीत
0: खैर विरोध काम क्रोध मोह
1: महालोक।

0: जाता
1: नानक कौन जन जन पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करतन बेरा
1: किसे दूज नावत किसे बजावत नेरा
0: पाव स्यानप सगल ते रहत
1: सब कुछ जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस ले

0: सार के संग मुख उज्जवल होता,
1: सार संग मन सदलिप होता,
0: सार के संग मिटे अभिमान,
1: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: सार के संग पूजे प्रभ नेरा,
1: सार संग सब होत मेरा,
0: सार के संग पाए नाम रतन,
1: सार के संग ऊपर जतन,
0: सार की महिमा बरने कान प्राणी,
1: नानक सार की शोभा ब्रह्म में समानी,
0: सार के संग अगोचर मिले,
1: सार के संग सदा पर खिले,
0: सार के संग आवे है बस पंचा,
1: सार संग अमृत रस पंचा,
0: सार संग होए सब की रेना,
1: सार के संग मनोहर रेना,
0: सार के संग न कथू तावे,
1: सार संग अस्तित मन पावे,
0: सार के संग माया ते पिन,
1: सार संग नानक रस उपर संग।

0: परमानंदा
1: साध के संग नहीं होता
0: साध के संगत जैसा व्याप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कब हूँ तावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस्त अगोचर लहे
0: साधु के संग रजत सहे
1: साध के संग बसे थान उचे
0: साधु के संग मैं पहुँचे
1: साध के संग दड़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु के करवान
1: साध के संग सब कुल उदार
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
1: साधु के संग सोतन पावे
0: संदे संग को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग को वासल देवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन भेट तोत निहाल
1: साध के संग कलूखत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहां उहां सोहेला
0: साध संग बिछड़ते हर मिला।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दुख
1: जैसे सूर सब को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज राम को लागे दुर्पमान
0: ब्रह्म ज्ञानी के

0: राम ज्ञानी के मन होए परगास, राम ज्ञानी के भीतर सतर समान,
1: राम ज्ञानी के नाही अभिमान,
0: राम ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
1: मन अपने है सबसे नीचा,
0: राम ज्ञानी से जन पै
1: नानक निर्भया करे,
0: राम ज्ञानी सगल किरीना,
1: आत्मरस ज्ञानी जीना,
0: राम ज्ञानी की सब ऊपर मैया,
1: राम ज्ञानी से कुछ पुराना पया,
0: राम ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: राम ज्ञानी की जय समृतवासी,
0: राम ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: राम ज्ञानी की है मर जोगा,
0: राम ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: राम ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: राम ज्ञानी एक ऊपर आस,
1: राम ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: राम ज्ञानी के गरीबी समाह,
1: राम ज्ञानी परोपकार माह,
0: राम ज्ञानी के नाही तंदा,
1: राम ज्ञानी रे साथ संबंधा,
0: राम ज्ञानी के होए सो भला,
1: राम ज्ञानी सो भला,
0: राम ज्ञानी संग सगले उदार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार।

0: ज्ञानी अमृत त्याग कर।
1: राम ज्ञानी के मन परमानंद,
0: राम ज्ञानी के मन सदानंद,
1: राम ज्ञानी सुख से जनवास,
0: राम ज्ञानी का नहीं निवास,
1: राम ज्ञानी ब्रह्म का वेता,
0: राम ज्ञानी एक संहिता,
1: राम ज्ञानी कै होए अचिंत,
0: राम ज्ञानी का निर्मल मंत,
1: राम ज्ञानी जस करे प्रव्याप,
0: राम ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: राम ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: राम ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक राम ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: राम ज्ञानी की

0: दे अखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्वदा ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
2: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नाम सार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
2: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता
2: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण वर्ग विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
2: ब्रह्म ज्ञानी का सर्व ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का

0: रोकते रहता है।
1: नानक वोट मने को ऐसा परस
0: सुनो सो जिस ऊपर सो परसान
1: की माया से होए
0: कर्म कार्त हो वैने कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचा ताने अंतर सिमरन गोपाल अवरह नाम जपावे भक्ति भगवंत भगत का रंग
1: अंत
0: बिनस सगला परम
1: सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत के चरण हृदय बसावे
1: भगवंत को पावे
0: पंडित जो मन पर बुद्ध राम नाम सार रस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: पंडित मेरे जो
0: वेद प्राण सिमृत बुझे।

0: कई कोट पवन पानी में संतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट शशियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव राम इंद्र सर शतर
0: सगल समग्री अपने सूत धारे
1: नानक जिस पावे।

वार्पश्रेयोपासार कोटकिने पात काका अंत न जाने कोए कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत् के भेते कई कोट नाम रस पीव है कई कोट नाम गुण गाव है।

0: होए पंडित करे बख्यान
1: कबहु मोर तारी लावे ध्यान
0: कबहु तत तीर्थ स्नान
1: कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया
1: मानक जोर पर मे परमिया
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावे
1: जो प्रपावे तिवे नचावे
0: जो तिस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: कबहु साध संगत हो पावे
1: बहर न आवे
0: अंतर होए ज्ञान परगास
1: स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा बसे पार भ्रम के संग
0: जो जल मह जल आए खटाना
1: जो जो

0: राज अभिमान
1: सो नाग पाती हो स्वान
0: जो जाने मैं जोवन पंत आपस को कर्म पंत कहावे धन भूमिका जो करे गुमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे धनवंता होए कर गरबावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तारे अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे आपस को जो भला कहावे सर्व की रेन जाका मन होए जब लग जाने मुझ ते कश होए जब एह जाने मैं किस करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस खटे लख कोठ तावे अनक भोग बिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राजे नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए जो किसकी नस अपने

0: घर पर सार टूटे हारोग मंदर का था मैं थमना खान नाव चढ़ तर अंधकार दीपक प्रकाश
1: दर्शन देख मन होए विलास
0: महाध्यान में मार्ग पावे
1: साधु संत में जोत पड़ा है
0: संतन की भाषा
1: दूर
0: मूर्ख काहे बिल लाइया भूख सुख प्रभ देवन हार कुछ करे सोई सुख मान बसताई तेरे संग
1: पतंग
0: राम नाम जप हृदय
1: महे
0: खर को लैन तू आया
1: राम नाम संग कर पाया
0: मान लिहो

0: कन गाये,
1: नानक बिगन ते साधु राखे,
0: गुण गाये मन रस चाखे,
1: गही संत हर आया,
0: सर्व सुख नानक ते पाया,
1: हर तक का जीवालन हार,
0: भूखे कौधे वगरे आधार।

0: परन जाका नेत्र पोर
1: जिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सत जाके राज में राज जोग में जोगी
1: ताप में कपीसर ग्रह सुने भोगी
0: आए ध्याए भक्त है सुख पाया।

बारंबार बार प्रभ जपिए नाम रतन जन गुरमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग नाम रस जो जन तिपताने उठत बैठत सोवत नाम बोलो जस जे बाजने।

जिस विश्वे गुर का मन माने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ सर्व निदान जी का दाता ब्रह्म में जन जन्म है पार ब्रह्म सहस स्यान पलया न जाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत भेटत संग राम गुण रवे सुन कर बचन करन आगाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए जिहबा एक औसत अनेक काहू बोल न पहचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित कर सद बलिहारी सतगुर अपने एहो हर रस पावे जन कोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगट है।

0: संत जना मिलकर हो विचार
1: एक सिमरन नाम रे वार
0: और अपाप समेत विसार हो
1: चरण कमल जन में उतार
0: अन्न कारण सो प्रभ समरथ
1: कर रहो नाम हर वक्त
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवान
1: संत जना का निर्मल मंद
0: एक आस रखो मन माह
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: स्थान को चार कूठ उठतावे
1: सो तन हर सेवा के पावे
0: सुख को नित बाश

0: कह हर अगम अपार
1: सब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए सब आप है आप अपनी जोत तरह अपने चलते आप करने हार अविनाशी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभु सोया जब व्यक्त गोचर
1: प्रवेका
0: जब नाथ निरंजन व गोचर गादे अपने आप पिय चार
1: जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता यह निरंजन निरंकार निर्वाण स्वरूप केवल जगदीश
1: है
0: ज्योत स्वरूपी जो

0: एक भगवंता
1: जय कौन चिंत से लागे चिंता
0: जय आपने आप पति आरा
1: जय कौन कथे कौन सुनने हारा
0: भव्यंत ऊंचते ऊंचा।

0: युक्त जाके सब हाथ
1: अंतर बाहर जनो साथ
0: दान बे अंत पार
1: नानक दास सुनावे हार
0: पूरन पूर रहे दयाल
1: सब ऊपर होवे कृपाल।

0: कपाल पारो
1: अलथ परत गोय लेहो सुवार
0: राम नाम अंतरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिख्या
0: जस मन बसे के सार परिख्या
1: अंतन नाम जपो ले बुलाए।

0: पूरी अमृत जा की दृष्ट
1: श्रेष्ठ
0: कर्ण कमल जाके अनूप
1: रूप
0: धन सेवा सेवक परवान
1: अंतर्यामी पुरुष प्रधान।

संत संग अंतर प्राप्त डिठा सगल सुमिगरी एक स्कट माहे नौ निधि अमृत।

0: आप साच धारी सब साच
1: बोध बोधे आपन संग राज
0: की गत मिथ कही न जाए
1: दूसर होए तसो जी पाए
0: इसका किया सब प्रमाण
1: जो
0: जाने तिस सदा सुख होए
1: आप में आए रहे प्रभु सोए
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत।

दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो शिव दुख समि नूर अर सोह कुर सोह चटिया।

0: KRPI Radio te tusi sun rahe si live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Zarre to leke suraj tak, kidi to leke hathi tak, ohi birajman. O kidi de chvi hai, hathi de chvi hai, o zarre de chvi hai, o suraj de chvi hai. Asti kiti trillo adam. एक अखंडत बसे अनादम, वो ऐसा है, पूरे आया, अपने कृत देच, पूरे आया, उदे स्वभाव देच भय नहीं है, वैर नहीं है, मनुख दी पहचान एक ते रूप तो होंदी है, एक उसदे स्वभाव तो होंदी है, हो सकदा रूप बड़ा सुंदर होवे, स्वभाव बड़ा भैड़ा होवे हो सकता है स्वभाव बड़ा चंगा होवे रूप बड़ा पैड़ा होवे क्रूप होवे चंगा ना लगे अष्टावक्र लत्तां भी टेढ़ियां बांवां भी टेढ़ियां कमर भी टेढ़ी गर्दन भी अठ थां तो शरीर विच बल करो उस जमाने विच दुनिया दा सब तो क्रूप मनुख अष्टावक्र पर उस जमाने दा मन करके स्वभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावकर तन करके बदसूरत है मन करके खूबसूरत है स्वभाव चंगा है तो एक बंदे दी पहचान होंदी है उसदे रूप तो दूजी पहचान होंदी है उसदे स्वभाव तो परमात्मा दा स्वरूप वो एक है उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है वो सदीवी है कायम दायम है करता है अपने कृत देच पूरे होया उदे स्वभाव देच भय नहीं है वैर नहीं है निर्वैर है निर्भय उदे अंदर भय नहीं है वैर नहीं है जिथे उदे स्वभाव देच भय नहीं है वैर नहीं है उथे उसदे स्वभाव देच उदी होंद देच समा भी नहीं है वक्त भी नहीं है इसनों मैं खोला थे मंगलाचरण मूल मंत्र दी ची समा लग जाएगा उदे समा भी नहीं है परमात्मा समा नहीं है अकाल काल समय नु कहंदे वक्त नु कहंदे एक निक्का जिहा नुक्ता तन नु भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है जगह चाहिदी है जगह ही नहीं है मनुख किथे बैठेगा जगह ही नहीं है किथे काम करेगा जगह ही नहीं है किमें भजेगा दौड़ेगा तन भजद दौड़द उठद बैठद कम करद स्थान देच मन भजद समय देच इनू स्थान की लौड़ नहीं है इथे बैठिया बैठिया भी मन दौड़ रहा है मन समय विच दौड़द किड़े समय दौड़द गुजरे हुए समय दिया यादा च चला जाता है आने वाले समय की चिंता चला जाता है मनुख कदी चिंता च बैठा हुंदा कदी यादां विच डुबिया बैठा गुजरे समय दियां यादां दा सिर ते बोझ आण वाले समय दी चिंता दा बोझ किसे वक्त फिर खुलासा परमात्मा ओ समय विच उत्थे समा ही नहीं है समय परमात्मा करके है समय करके परमात्मा नहीं असी समय करके हां सानू समय ने बनाया सिर्फ समय ने बनाया ही नहीं काल ने बनाया नहीं सानू काल खा भी जाएगा समा खा भी जाएगा काल पाए ब्रह्मा बपदरा काल पाए शूजु अवतरा काल पाए कर विसन प्रगासा सकल काल का किया तमा सारा आकार ते संसार काल दा तमाशा है समय दा तमाशा है जो समय च बने है समा मिटा देगा जो समय दे आया है समा उसनो रुखसत कर देगा जो समय दे बने है समा उसनो मिटा देगा उस समय करके नहीं है परमात्मा परमात्मा करके समय स्वास्थ्य अका कोई ना समझे कल्पना मात्र है मूर्तिमान है मूर्त है कि मूर्त तो मुराद फिर एकदम बन जाए किसी ने घड़े आवेगा किसी तो जमे आवेगा एकदम सतगुरु कहते अजो नहीं जमया नहीं अजन्म है अमरन है जमया नहीं है तो फिर कैसे है? सैवं, संस्कृत का शब्द है स्वयं भू, अपने आप तो प्रभू होया, अपने आप तो प्रकट होया, आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैवं शंभु स्वयं भू, पंजाबी रूप सैवं, अपने आप तो आप ही होया। फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, वो जड़ा एक है, वो गुरु है। ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है। ज्ञान ही ते गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम वे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है, ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि दी नहीं आती, परमात्मा दी आती है। कवि दी पकड़ दी आ गई, उदय पांडे समा गई। कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता, सब परमात्मा का। जद कोई कह देंदा है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जद कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वो ही असीम हो जाता है। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इथे तक मूल मंत्र मुख्तसर, ते हुण आप शब्द सरवण करो। हां जी,

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन ले जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन ले जा रहे हैं, पुन करन ले जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुनया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। एक कदों निकलती है, जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है, उंज नहीं निकलेगी। उंज बथेरी अरदासा आउंदियां ने ते मनुख करदा। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है, फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है, खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत दे हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथानु जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहंदे ने, यक अर्ज एक मेरी अरजोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने। ऐ करतार, जे तू कन ला के सुने, मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसदे कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे, नहीं सुन सकदे, क्योंकि असीं जिथे बैठे कन उत्थे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उत्थे ही आउंदियां, उसदी जबान उत्थे ही आउंदी है, उसदियां अखां उत्थे ही आउंदियां। जिथे है उत्थे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है, ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरदोई कीती जा सकदी, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है, फिर अगलियां पंक्तियां जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीक को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सैंस अठारह कहन कते बा असलू एक ता

आखे पड़े करे वख्यान, आखे ब्रह्मे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सोर नार मुन जन सेव, केते आखे आखन पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे ता आख न सके केई के, जेवड पावे तेवड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगान, ता लिखिए सिर गवार अंगवार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वै सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे, केते राग प्री स्यो कहियन, केते गावन हारे, गावे तुनु पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति स्थिति संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रहीसर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावे रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महामलसूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सही तुनु गावे जो तुत पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया, जिन उपाई कर कर वेख है कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पात सहा सहा पत साहेब, नानक रहन दजाई, मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करो बबूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भूत ज्ञान दया पंडारन, कट कट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी।

ना कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेख नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुक्त प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्द करदा अधो उर्ध अर्दं अगक उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेति अपेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्तस्तताम तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ती निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साए नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग परसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मात्र मान देव अभेद आदोदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक देव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकुट दाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ

कालांकन अनुभूत अंग अभाव अंगत मित गुण गण उदार मुन गण गुरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलचेक आदिष्टे तरम सर्वा बरनाडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछज देशय के आभिज वेशय के आगंज कर्मय के आभंज भरमय के आभिज लोक के आदित सुख के अवधूत वर्णय के बेपूत करणय के राजन प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशुक वर्णय के सर्वा अवर्णय के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा के पाक बे अब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रही है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलामे सली खुदा में गरीब उल शिकस्ते गरीब उल पलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज उल तमामे रजू अल निदाने हरीफ उल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है निरकश स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैव कलाम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अछज है छूत है कि नरकम प्रनाश है प्रचुर प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित तो अमेक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇ ਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪ੍ਰਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸੁਨਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਨ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਾਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਵਾ ਏ ਕੈ ਸਦਾ ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛਜਗਾਤ ਅਜਨਾਬਾਤ ਅਨਛਗਾਤ ਅਨਰੰਜਵਾਤ ਅਨਟੁੰਡ ਪੰਡਾਰ ਅਨਠੰਡ ਅਪਾਰ ਆਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਸ਼ੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾਲੇ ਹਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਕਲਖੰਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬਵਾਰਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਜਗਜਾਨੀ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਪਾਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਬਪਾਸੀ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸੀ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਬਿਸਵੰਬਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਕਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾਜਪ ਹੈ ਅਤਪਾਤਵ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਤਰਨੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਕਲਗਾਇਕ ਹੈ ਬਿਸਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰਨਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਮਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰੂਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵ ਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਵਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਵਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਪੰਜਾਂਗ ਪੁਰਾ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰੰਗ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਦ ਜੁਦੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਪੋਜ ਪੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲੇ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦ ਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਕਲੰਕਾਰ ਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸੇ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਗ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਦਰਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਕਾਮੇ ਏਕ ਅਸਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਭੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਭੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾ ਅਡਾ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੂਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨ ਰਾਗੇ ਨ ਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਅਭਰਮੰਗ ਅਗਜੇ ਅਲੇਖੇ ਪੁਜਾਂਗ ਪ੍ਰਜਾ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸੁਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜਨ ਅਨਾਮੇ ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰਗ ਬਭੂਤੇ ਸੁਮਸਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੋ ਧਰਮੰਗ ਪ੍ਰਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀਮ

भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रती बिन एक रती के माते में तांग जरे जर संग अनुपुतांग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पहुन के गोन कुजात निवारे पारी प्रजान कपूर पहली बर न्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे बबल अंध को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गुजान के सुंदर हंस दह राज हजारे ओत पवेख पवान के पुवत कौन गुने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सुबा दुरन दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

0: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बिछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सची पत अंत बसे जमफात भरेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे। कहाँ भयो जो दो लोचन मुंद कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो। नहात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो। बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो। साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो। कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो। को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो। कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया। सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा। और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ। जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करो रक्षा।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी।

सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर।

वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रीतम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्यार। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आई है।

0: गुरु रूप सात संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। HMV पिछले 50 सालां तों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी पाठ ते शब्द रिकॉर्डां कैसटां राही आप जी दी सेवा विच पेश कर रहा है। भाई साहब तलोचन सिंह रागी दी आवाज विच 1966 तों हुण तक आप जी पाठ सुखमणी साहिब नितनेम दीआं बाणियां अरदास हुकम ते कई शब्द सुन चुके हो। हुण संगतां दी मंग नूं मुख रखदिआं होइआं नितनेम दीआं सारीआं बाणियां जो पहले अलग अलग सन इको कैसेट CD विच पेश कीतियां जा रहीआं हन। सवेर दीआं बाणियां जपजी साहिब, जाप साहिब, त्वै प्रसाद सोईए, चौपई ते आनंद साहिब, संध्या वेले रहराज साहिब, रात सौण वेले कीर्तन सवेला। छेती ही भाई साहिब दी आवाज विच रिकॉर्ड कीते होए सारे शब्द इकट्ठे कैसेट CD विच आप जी दी नज़र करांगे। उस तो बाद आसा जी दी वार दे कीर्तन दी कैसेट भी छेती ही आ रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी ने पाट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नूं जाणिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्ने ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो कृपालता, फिर उच्चा

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आद गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू परवृत नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ा बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खड़ियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक ले। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकनाती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दित्ती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथो तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उहदा सुभाग है चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्नू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती एक टेक हो के ते अर्ज कर रहे हां कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खोन सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओ आसमान दे उते ओ धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नू देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नू देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों हाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकारन लग पिया है। ओहदे विच भी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणो मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमक दे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरण तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदियां बहुत सोहणी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर खड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्होंने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हा कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नूं प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना है परमात्मा नूं प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटै बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ए समझ पैंदी है कि परमात्मा सारियां थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए मन रे क्यों छूटै बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नूं कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनूं प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तो जे इंसान नूं समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं।

0: अष्टपदी
1: अवनसी ब्रह्म मन मह राख
0: मानु की तु प्रीत त्याग
1: ऐसे परे नाही किश होए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ फिर की चरणी पाऊ
0: नानक कै मन हे नराव
1: मनसा पूर्ण शरणा जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरम जाका नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: अंद रूप मंगल सद जाका
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: अपमत पीसर कृष्ण मैं भोगी
1: त्याई त्याई भक्तां सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला तीमित नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म रेफर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना बिद किनो विस्तार
0: रबे बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे किन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना भेद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊं
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के बल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रकाश खुदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सृष्ट सो करण हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझा तिस आया स्वाद
1: सबके रंग राज जन रहे
0: गुरके वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेवक सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन्न हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावन हार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजा तिस माहे समाना
1: बस माहे ले बस कटाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: रब का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रपालन हारा
0: सेवक की रख है निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढाकै
0: अपने सेवक की सर पर रख है
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: राको राखत दे कर हाथ
1: मांस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव वृथे जात
1: मारे न रखे अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभ लख बडानी
1: बार बार बार प्रभ जपी है
0: अमृत मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मन तन नामे नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोभत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस देवा दिन रात
0: रब अपने जन की नींदा
1: करे भक्त आत्म कह चाये
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से ही जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: इसकी शरण सर्व सुख पावहे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अब सियानप सगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरुख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: ਜਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖੀ ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲ
0: ਸੇਵ ਕੌਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ
1: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ
0: ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ
0: ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ
1: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰੇਹ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ
1: ਆਪ ਉਸਕੋ ਕਰ ਕਸ਼ ਨਾ ਜਨਾਵੈ
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ
1: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ
0: ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
1: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ
1: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ
1: ਜਿਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ
1: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਕਹਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
1: ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਭਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ
0: ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
1: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਪੁਨੀਤ
0: ਦਰਸ਼ਤ ਚਰਨਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
1: ਦੇਖਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ
0: ਪਾਰ ਰਮਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ
1: ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ
0: ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੰਪਤੀ ਆਨੈ
1: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਕਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ
0: ਅਮਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ
1: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਵਾਏ ਕੋ ਸਤ ਅਨੇਕ
0: ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ
1: ਕਾਹੂੰ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ
0: ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ
1: ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਈ
1: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰੇ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ
1: ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਪੁਰੇ ਆਪਣੇ
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ
1: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋਏ
1: ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼
0: ਜਾਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ
1: ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ
0: ਸੱਚ ਉਪਦੇਸੇ ਵਕੋ ਦੇ
1: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ
0: ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹਰ ਹਰ ਏਕ
1: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ
0: ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਬਹੁ ਦੁਖਤਾ ਤੇ ਨਾਸੇ
1: ਸਤ ਮਾਹੀ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ
0: ਅਣਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ
1: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ
0: ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ
1: ਭਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੈ
0: ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿ ਨਸੇ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ

0: अपन आसन
1: जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभु एका
1: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपन आप ही अचरजा
1: नानक अपन रूप आप ही उपरजा
0: जय निर्मल पुरख पत होता
1: जय बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: जय कौन कमान कौन अपमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: जय शल छिद्र लगत कहो कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समा
1: कसै भूख कवन तृप्तावे
0: करन करावन करना हार
1: नानक करते का नहि सुमार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई
0: जय सर्व कला आपे प्रवीण
1: जय वेदक देव कहां को चीन
0: जब अपन आप उरता है
1: शगन अपशगन कहां विचार है
0: जय अपन ऊच अपन आप नेरा
1: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विस्म रहे विस्माद
1: नानक अपनी गत जन हो
0: जय छल अशेद अभेद समाया
1: वहां कसै व्याप्त माया
0: आप उसको आपे आदेश
1: गुण का नहि प्रवेश
0: जय एक है एक एक भगवंता
1: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय आपन आप पतियारा
1: जय कौन कथा कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा
1: नानक आपसको आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो प्रपंच आकार
1: त्रिगुण मैं कीनो विस्तार
0: पाप पुन तह भई कहावत
1: ओ नरक को स्वर्ग विशावत
0: काल जाल माया जंजाल
1: मैं मोह परम पै भार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अनक प्रकार की उपख्यान
0: अपन खेल आप कर देखै
1: खेल संकोच तो नानक एक
0: जय अवगत भगत है आप
1: पासार संत प्रताप
0: तुम बापा आपे धनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आपे कौतक करे अनब जोज
1: आपे रस भोग निर्जोग
0: जिस भावे तिस आपन नाई लावे
1: जिस भावे तिस खेल खिलावे
0: बेशुमार अथाह अगन अतुल
1: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक
0: जी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार
1: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार राष्ट्रपति
0: आप कथा आप सुनने हार
1: आपे एक आप विस्तार
0: जांच पावे तां श्रेष्ठ उपाय
1: अपने भाने लय समाये
0: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
1: अपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्राप्ति आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् का बेता
1: नानक सगल सृष्ट का जेता
0: जी जंत्र सबका कै हाथ
1: दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राख तिस को नमर
1: सो मुह आज समनो बिसार
0: इस तक अवर कहां को जाए
1: सब सिर एक निरंजन राय
0: की जुक्त जा कै सब हाथ
1: अंतर बाहर जान साथ
0: गुण निधान बेअंत पार
1: नानक दास सदा बलहार
0: पूर्ण पूर रहे दयाल
1: सब पर हो वित कृपा
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रहो व्याप
0: प्रत पाले जी अनुभव भांत
1: जो जो रचियो सो तिसे त्यात
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: भगत करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या
1: करन हार नानक एक जाने
0: जन लागा हर एक नाई
1: इसकी आस न वृद्धि जाए
0: सेवक को सेवा बन आई
1: हुकम बूझ परम पद पाई
0: इससे ऊपर नहीं भी चार
1: जाके मन बसया निरंकार
0: बंधन तोर भय निर्वैर
1: हर दिन पूजा गुर के पैर
0: हे लोग सुखी परलोक सुहेले
1: नानक हर प्रभ आपे मेले
0: साथ संग मिल करो आनंद
1: उनका वो प्रभ परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार
1: दुर्लभ देखा करो उदार
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ
1: प्राण तरन का यह स्वाव
0: आठ पैर प्रभ को नेरा
1: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
0: उपदेश हृदय बसावो
1: मन इच्छे नानक फल पावो
0: हलत पलत दो लेहो सवार
1: राम नाम अंतर उतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया
1: बसत साच परीखिया
0: मंत्र नाम जपो लिबलाए
1: दुख दर्द मन ते पाओ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: दरगह निधह खेप तुम्हारी
0: एक टेक रखो मन माहे
1: नानक बहुर न आवे जाहे
0: इससे दूर कहाँ को जाए
1: उबरे राखन हार ते आए
0: निर भव जपै सकल भव मिटै
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै
0: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै हंकार
1: इस जन को कोई न पहुंचन हार
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कार्य पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
1: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: भान सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसै सुहोत निहाल
1: राका निकट न आवत काल
0: अमर भये अमरा पद पाया
1: साध संग नानक हर त्याया श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
1: हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ दीठा
1: ना प्रभु का लागा मीठा
0: सकल समिग्री एक घट माहे
1: अनक रंग नाना दृष्टा है
0: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम
1: यही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहद तहनाद
1: कह न जाइए चरित विस्माद
0: तिन देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक ते दर सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: घट घट व्याप रहा भगवंत
0: धर्म माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: अंतिम पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पाणी ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ
1: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
0: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
0: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
1: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਏਕ
0: ਬਾਣੀ ਪਾਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
1: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
0: ਸਭ ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
1: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
0: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਕੀ ਜੋਤ
1: ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
1: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
1: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
0: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
0: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
0: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
1: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
1: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
0: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
1: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
0: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
0: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
1: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
0: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
1: ਸਰਬ ਨੈਣੇ ਆਪ ਖਨਹਾਰਾ
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
1: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
0: ਆਵਨ ਜਾਨਿਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
0: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
0: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ
1: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
0: ਇਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
1: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਸ਼ਕਰਾ
0: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਮੀ ਕੀ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
0: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
1: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਚ
0: ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
1: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
0: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
0: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
1: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ
0: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
0: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
1: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਨਾਮ
0: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ

कोई बणत बना के एक किचल दूजा सत पाल घर बेच बला के एक किचलू दूजा सत पाल घर

0: जन परवान
1: रब को सिमरे से पुरख प्रधान
0: रब को सिमरे से बेहमो ताजे
1: रब को सिमरे से सर्व के राजे
0: रब को सिमरे से सुखवासी
1: रब को सिमरे सदा अविनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जन की मंगे रवाला
0: रब को सिमरे से पारि उपकारी
2: रब को सिमरे तिन सतगुर हारी
0: रब को सिमरे
3: तिन शुरू करो
0: गौड़ी सुखमनी महला पांचवा श्लोक एक ओंकार।

0: सिमरन कबहु का प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभु कै सिमरन कबहु न छूरे
0: प्रभु कै सिमरन हरि गुण बानी
1: प्रभु कै सिमरन सहज समानी
0: प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन
1: प्रभु कै सिमरन कमल विकासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार
1: प्रभु सिमरन अंतर पार
0: से सिमरे जिन आप सिमराए
1: नानक ताके नानक
2: जन का प्रभु मैं
1: नानक तेंजन सन्नी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पै सिद्ध

0: विचार
1: नानक कर्म नाम जपिए
0: अखंड पृथ्वी फिरे चर जीव
1: महावन
0: महे होमत प्राण बोली कर्म करे वासन मिख निमिख कर श्री रुकटावे के नाम संसार कशना है
1: नानक गौरम नाम जपत जत पाए
0: मन कामना तीर्थ दे छुट्टे।

0: प्रवराते
1: उमरी औसत तुम ते होए
0: नान केवल न जान सोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्बल कर्म
1: क्रिया में उत्तम क्रिया
0: साध संग धर्म मत मल लिया
1: उद्यम में उद्यम फला।

0: जाता
1: नानक कौन जन जन पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे जाने
0: आपे आप करत न बेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
0: पाव स्यानप सगल ते रहत
1: सब जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस

0: जय प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे
1: सागर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंधित तन लाभ है
1: जिसको सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बस है सुख मंदिर
1: जिसे प्याए ससाम अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याए रावण भोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है
1: जिसे त्याग का त्यावन
0: जय प्रसाद सुख सेज सोई जय जय प्रसाद तुझ सब को माने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दरगह मान पाव है
1: जय
0: प्रसाद आरोग कंचन देही
1: जय
0: प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मान सुख पावे
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके जय प्रसाद तुझ को ना पहुँचे
1: मन साथ साथ सिमरो प्रभु
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह
1: नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद अभूखण बहरी जय
1: मानस सिमरत को आलस की जय
0: जय प्रसाद असभ हस्त असवारी
1: मानस प्रभु को कबहु ना सारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख प्रोय प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठ बैठ तुसे ध्याई
0: सहे ध्याए जो एक अलख है
1: नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करहे पुन बहुदान
1: मन आठ पैर कर दिशा ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: प्रभु को साथ साथ तारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: प्रभु सिमरो सदा रूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सो प्रभु सिमर सदा रात
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस रहे
0: जय प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
1: जय प्रसाद पेखे बसनाद
0: जय प्रसाद बोलहे अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जय प्रसाद हास्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण पड़े
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अबर कत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू प्रगट

0: संग मुख उज्जवल होता,
1: साध संग मन सलीक होता,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: साध के संग पूजे प्रभु नेरा,
1: साध संग सब हो बदलेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कान प्राणी,
1: नानक साध की शोभा परमहंस समानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा
0: साध के संग आवे है बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पंचा,
0: साध संग होए सब की रेना,
1: साध के संग मनोहर रेना,
0: साध के संग न कथू तावे,
1: साध संग सुत मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न,
0: साध संग दस मन सब मीत,
1: साधु के संग महाप्रणीत,
0: साध संग के स्यो नहीं बैर,
1: साध के
0: साध के संग ना ही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंदा,
0: साध के संग ना ही होताप,
1: साध के संग तजे सब आप,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु पाए आई,
0: साध के संग न कब हूं तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस्त अगोचर लहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग मैं पहुंचे,
0: साध के संग दड़े सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के करवान।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सफल जन्म,
0: साध के संग नहीं कश काल,
1: दर्शन भेट तो निहाल,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहां उहां सोहेला,
1: साध संग बिछड़त हर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न मिलता जाए,
0: पार ब्रह्म सादर बसे,
1: नानक उदरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाम,
1: साध संग हर हरे गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभु मीठा,
1: साधु के संग कटका
0: साध संग पै आज्ञाकारी,
1: साध संग कट गई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध मिटे संयोग,
0: साध की महिमा वेदना जाने,
1: जेता सुने ते ताव के आने,
0: साध की उपमा तह गुण ते दूर।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दुख
1: जैसे सूर सब को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज राम को लागे दुर्पमान
0: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
1: गंगा को खोदे को चंदन एक
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ
1: नानक ज्यों पाव का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे नैन न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने में सबसे नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै
1: नानक
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
1: आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी जीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया
1: ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी के हो सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सर्व संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के सदानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहजन वास
1: नानक
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रव्याप
1: ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाइय
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: प्रसाद विखिया पर हर
1: मन की वासना मते करे
0: इंद्री जित पंच दुख ते रहत
1: नानक ओट मते को ऐसा पास
0: सुनो सो जिस ऊपर सो परसान
1: जिसन की माया ते होए
0: कर्म कर्त हो वैने कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भक्त की संग राचे
0: संतान अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर हो
0: दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानक होवे सो परम गत पावे
0: भक्ति भगवंत भक्त का रंग
1: सगल के आगे दुष्ट का संग
0: अंते बिनसे सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: सुगंधी की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवंत को पावे
0: पंडित जो मन पर बुद्ध
1: राम नाम आत्म में सोवे
0: राम नाम सार रस पीवे
1: उस पंडित के उपदेश जग जिए
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: पंडित में जो नावे
0: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल।

0: आया
1: राम संतन पाए तन पाया
0: दादा निकट निकट हर जान
1: सो दास गए परवान
0: अपनी दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सोगी पाए
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जरूरत नानक राम दास
0: की आज्ञा आत्म हतावे
1: जीवन मुक्त हो पाए
0: सा हर खत ऐसा उस सोग
1: सदानंद नहीं वियोग
0: सा सवर्ण तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी बेखाटी
0: तैसा मान तैसा अवमान
1: तैसा रंग तैसा रंगान
0: बरताए साई जगत
1: नानक पुरख कहिए जीवन मुक्त।

0: कई कोट होए पुजारी कोट पे तीर्थवासी कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट पीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार है
1: कई कोट अवतार बिचारे
0: कई कोट नवतन नाम त्याग है
1: कई
0: कोट पे अपमानी
1: कई कोट
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट
0: कई कोट पर दर्प को हिरे
1: कई कोट दुख ना करे
0: कई कोट माया।

0: तह तह राखे
1: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे
0: गई कोट पै बैरागी
1: राम नाम सब तन लागी
0: गई कोट प्रभु को खुंजनते
1: आत्म में पर ब्रह्म लहंते
0: गई कोट दर्शन प्रभु प्यास
1: तिनको मिलियो प्रभु।

कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत् के भेते कई कोट नाम रस पीव है कई कोट नाम गुण गाव है।

0: होए पंडित करे बख्यान
1: कबहु मोर तारी लावे ध्यान
0: कबहु तत तीर्थ स्नान
1: कबहु सेस साधक मुख ज्ञान
0: कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया
1: अनक जोर पर में परमिया
0: नाना रूप जो स्वा

0: पार संगते हो पावे
1: शांति पावे
0: अंतर होए ज्ञान परगास
1: स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
0: जो जल में जल आए खटाना
1: जो जो

जो जाने मैं जोवन पंत आपस को कर्म पंत कहावे धन भूमिका जो करे गुमान।

बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस सबते आप जाने बलवंत सेना बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तारे अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे।

जब लग जाने मुझ ते कछ होए, जब एह जाने मैं कछ करता, जब तारे को बैरी मीत, जब लग मोह मगन संग माए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, सहस खटे लख कोठ तावे, अनक भोग बिखिया के करे, बिना संतोख नहीं को राजे, नाम रंग सर्व सुख होए, कर्ण करावण आपे आप, कर्ण करावण करने हार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, जो किसकीनों सो अपने

ज्ञान में है आप मन अपने माहे सत सत सत प्रभ स्वामी सच सच सच सब कीना भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

0: संत के दुखन हार जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संत निंदत भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संत

0: मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा,
0: जो पावन की धन नहीं खावे।
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो बाण तेल माहे दोहिला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सब मिला कहत।
1: सिरत निंदक का तुर ही पया,
0: नानक ज्योति सुभावे सोई दिया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दर्द मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाय।

0: परे नाही किस कोए
1: को सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: सुजाना
0: और हम परमेश्वर गोविंद।

तन जन गुरमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग नाम रस जो जन तिप ताने उठत बैठत सोवत नाम बोलो जस हे बाजन।

की गौर दौर मात माल हिरे सतगुर सिख के बंधन काटे सतगुर सिख को नाम धन दे सतगुर सिख का हालत पालत सवार गुर के ग्रह सेवक जो रहे आपस को कर कश न जनावे। मन

0: जिस विश्व गुर का मन माने
1: सो
0: सतगुर जिस हृदय हर नाओ सर्व निदान जी का दाता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म सहस स्यान पलया न जाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत भेटत संग राम गुण रवे सुन कर बचन करन आगाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए जिहबा एक औसत अनेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित कर सद बलिहारी सतगुर अपने एहो हर रस पावे जन कोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगट है।

0: संत जना मिलकर हो विचार
1: एक सिमरन नाम अवतार
0: और अपाप समेत विसार हो
1: चरण कमल रत में अवतार
0: अन्न कारण सो प्रभु समर्थ
1: कर रहो नाम हर वक्त
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: स्थान को चार कूठ उठतावे
1: सो तन हर सेवा के पावे
0: सुख को नित बादशाह मी।

0: अपावन शूटन हारे हर की भक्त करहो मन लाए
1: मन वंचित नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे तना
1: सत
0: मीत कुटुंब अर बनता
1: सुनाता।

0: कह हर अगम अपार
1: सब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: सब
0: आप है आप अपनी ज्योत तरह अपने चलते आप कारण हार अविनाशी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभु
1: सोए
0: जब व्यक्त गोचर
1: प्रवेका
0: जब नाथ निरंजन व गोचर गादे अपने आप आपी
1: चर्जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता निरंजन निरंकार निर्वाण स्वरूप केवल जगदीश
1: ज्योत
0: स्वरूपी।

0: की जुगत जाके सब हाथ
1: अंतर बाहर जनो साथ
0: पूर्ण दान बेअंत पार
1: नानक दास सुना बलिहार
0: पूरन पूर रहे दया।

0: वेद इसलिए मिलाए मनांतर विश्वास कर मान्या जंगा गाहर एक नाये
1: इसकी आसना में दी जाए
0: देव को सेवा बनाई
1: परम पद पाए
0: इससे ऊपर नहीं विचार
1: नंदन
0: तोर पे निर्वैर
1: अंदर पूजे उनके पैर
0: ये लोक सुखी पर लोक सहले सात संग मिल करो आनंद
1: परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार
1: अमृत
0: वचन हर के गुण गाओ आठ पहर प्रभ वेखो नीरा उपदेश हृदय बसावो पलत पलत गोए लेहो सवार पूरे गुर की पूरी दिख्या
1: बसे
0: नाम जपो ले बुलाए।

0: सिमरत मैं देख वाणी प्रभु की सबको।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: परम का नास
3: नानक जन में हो विश्वास
0: संत जना का पेखन सा ब्रह्म।

0: सास सास सिमरह गोविंद
1: मान्यंतर की उपरेंद्र
0: सास नित्य त्याग हो तरंग
1: संत जना की तोड़ मांग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: साध संग अगर सागर धरो
0: हर तन के भर लेहो भंडार
1: नानक गौर पूरे नमस्कार
0: केम कुशल सहज आनंद
1: साध संग भगत परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो चित चित बहो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: पंजन पूरन के पाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ए आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमरीक लाले
0: सुनत कमावत होत उधार
1: आप करे लोग इंसार
0: सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद वाजे प्रगटे गोपाल महात के माथे
1: नानक उतरे तन के साथे
0: चरण जोग सुन

पानी माहे देख मुख जैसा नामे को स्वामी बीठल ऐसा सो कहो टल गोर से भी सहनस सहज सुबह दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900।